अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए। देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम, हर छोड़ न कतू जाए। कौन

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेता किस

医生。खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा सारंग महला पंजवा हम दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लइए रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पीवड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

और ब्रह्मचर्य उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल बिना से जो आवे हर संत सरन, आप जपे अवर

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

मानस जन्म गुलवाई, गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग पूर लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही, कर्म राय जब पकरस बवरे तो काल

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुझे।

मन कहां लुबाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभसदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ। अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे, सगल अग निम

वेलाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन कार्यावो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो।

तो प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पहे है यो छेदियो दुष्ट बिगाना रहाओ। तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोग अज्ञान प्यान, इतने मत ना कीमत।

बिसरियो पंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बसर दीना पोगो पोग निसंगा निरपो पै नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रय अंक समानी।

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदार रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिए ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहा।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया। हौं बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो

और द्वितीय आकाश बिराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे सौ नानक मैं।

आओ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन में खो भई है गुर मिल हर हर।

डाड लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बारिश की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाये आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन होए जाये एक ओट पकड़ी।

नाम और खुद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे। कमन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे। काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे। सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी। पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हिसारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

गुरु कै बचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा परताप रहाओ गुरु उपदेश साध की संगत बिन फ्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

करूं नित सेवा, गुर अपना नमस्कारया, सर्व फला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारया। सारंग महला पंजवा, सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेश त्रास सब नाते, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, सज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे था।

फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

समाए अनद अनद गुण गाया बाँ पकड़ कडली ने अपने गृह अंधकूप से माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाई है।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभु।

में निर्मल बहुर जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा तू निथावे थाओ, सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाओ, सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम, सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको जाता अंत न पार, सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे बिनस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे कुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ बलबंच करे ना जाने लाबे सो तूरत नहीं।

भगत गुण गावत गीजे होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंग दुख को।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए। करो कृपा गोपाल भी ठुले बिसर ना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए। जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल

निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख बंजन तेरे संत की रावार।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

अपना प्रभु त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण राम।

आओ आन न जानो दुतिया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हू राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार, कर जोर नानक

कास्यों ने हो लगाई, जोदी सैसो सगल विनाश है ज्यो बादर की चाही। तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है चिन्माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवा।

सहज समाध सदा लिव हर स्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बड़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते में केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना। सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी। गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर न सू

हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कै शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्द बहु रानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, नाम बिना सब

बूझ बुझाई सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा।

अगम अगाद सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जा का विस्तार, सो बाता की अप

का दाता, कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थीरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने।

परवेशा अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थनंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरिदा जी चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया पया प्रगास।

करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

आए मूर्ख अंधिया अंधी तात कह को कहन कहाएन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामी वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिवलाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मियो वरे सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समाणी नानक निगुरिया।

जय पाए नाउ कदे ना पायन दुख लागा अत भारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवे माया कै व्यवहारी अंदर कपट उदय।

प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या सो पौड़ी। आस करें सब लोक बहु जीवन जानिया, एक जीवन को चित गढ़ मंडप संवारिया। बलवंश कर उप

वस्त्र पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

माया मोह विसारिया, गुर का पौ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरुमुख जिना सबद मन वसै।

हर गुरमुख नाम दियाए, दुख पुख काणा सब चुकाए सी, मिहु उठा छे बरलाए, सब तरत पाई हरियावली, अन जमिया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए, हर किसे त्यावो संत जनों, जो अंते ले चलाए, हर कीत पगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख दुख ले जाए, जन नानक तृप्तै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुरपूरे की दात नित देवै चढ़े सवाइया, तुस देवै आप दे।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सच

देहि नानक रुत सुहावी साई बिन नाम है रुत के ही मलार मैला पहला करो बिनो गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन कम कोर शीतल मन मोरा लाल वती गुण गावे बरसपना में।

गुरबचनी मन मानिया, हर वर नार तई सोहा गण, मन तन प्रेम सुखानिया, अवगन त्याग तई बैरागण, अस्थिर वर सोहा गहरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे, हर प्रभ अपनी कृपा करी, आवन जान ही मन में चले, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागन सच सही, मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं तृप्त गवाया।

ऐसा नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिर का साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी कई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म पुलानी बस कना मेरा सिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों हम जिन भगत सुहावी मुक्त पे गुर बरस दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौर न पव जल फेरा अपने पिर हर देख विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत्साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सरद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडीठा कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहिए दो विचार दिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो वै बात अंतर है निवलाए।

गर्दना पोले दारू लाए, चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल तत में सास, सास दे काया तल पाए, ताके पाछे कोई न खाए, कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंश, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटे से साचे नाए, मलार महला पहला, दुख महुरा मारन हरन।

हूँ मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख रे गुर के शब्द सुभाए मन रे हुक्म मन सुख रोए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोची है पये किरत फिराए सतगुरु पेटे मन मर रहे हर नाम वसे मन

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पीजा गुरमुख कोई गिरना बूझे जिसनो

एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

समझ सुख अंतर सदा निभय तेरे नाल राव। मन मुक्ता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ न आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए। गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

एक बिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द।

मन गिरही के एहु मन उदासी के एहु मन अवरण सरा अविनाशी के एहु मन चंचल के एहु मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी पंड

जा एको वेख्या ता एको जाने, जा को बक्षे मेले सोए, एथे ओथे सदा सुख होए। कहत नानक कौन विद करे क्या कोए, सोई मुक्ते जा को कृपा होए। अनदिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक न होए। मलार मैला तीजा परम परम जोन मन मुख परमाई, जम काल मारे नित पत गवाई। सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल कर

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गए, गुर शब्दी अस्थिर कर गए, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत।

हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपे पागी रथयानी केदार थाप्यो महसाई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले।

कीर्तना ही हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देखवाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

किन संगत हर मेलो करमाया, किनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सृष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाए, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लहे दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंख को बतावे, हों पा कह पाई लागी। रहाओ हर हमारो मीत सफाई, हम हर स्यो प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह काहू।

ए मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी ओ आया, तो मैं सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, फिर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक संत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मल्हार महला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीर रह न जाए, सार संभाल माता मुख नीरे, तब हो तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निधान गृह तेरे, मन बांचे सो लैसी, पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना, मल्हार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेसा, कारज सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, पगत करो निर पाए, जब प्रेम आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पहे अनंदा, गुर कारज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे, मल्हार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आन को पूजे, आत्म का सी हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहुजोनी, एक न काहू।

कथा तथक हम करते, शिव ग्रंथ असुर सुर जेते, काल अगन में जरते, नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते, राग मलार महला पंजवा, दुख दे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हों एक खिन तिस बिन रह न सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनके संग मोहे

सीता कृपाल कई बड़ पागी मां सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जी कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती एहो मैं कीटी ठाई कई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

कहु नानक मेरो बन्यो सुहागो तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ।

मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे।

हुए मर जाहीं, मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे, नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे। मल्हार महला पंजवा, हर कै भजन कौन कौन न तारे, खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा, तन साधु संग उदारे रहाओ। देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे।

श्रम पायो तम तम होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई हो तो संग ना जानो मृग पंखी मीन दीन नीच ए

तीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे, नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस की जय, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ, जय जयकार की नो सब जग में, दया जीवन में पायो, कंठ लाए अपनो दास राख्यो, ताती वाओ न लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रम को मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसम त्याय रहा।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मनार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए, कर कृपा पूर्ण।

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सर्जंत, गुण गावो नित नित भगवंत।

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस पाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भय अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहार।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन तोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला तन्यवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला तन्यवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु देन।

पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चकवी।

लाई। शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिलप करे बिल लाई। कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जापे, सतगुर बाजो।

जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौ दिस हुक्म वर्ते प्रभु तेरा, चौ दिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरना दी से सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

पति उपजै हर सिउं रहा समाए मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संगराते, जन संगराते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी।

आया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहसिय ज्यो उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी छे लाल कमल विग से सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना

गुरु नानक सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत विछोड़ चंगोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन कुर्बाणिया तुद सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छिया रसिया कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वरन सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आका

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बख्शे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

जो हर चरणी रह लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग करे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते हो मैं तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वर्षे कृपा धार, नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

गुण मेरे समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए विन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किस न वसाए श्लोक महला तीजा बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवगल वन महला तीजा बाबी हा जल में तेरा वास है जल ही माय फिरा है जल की सार न जान ही तातू कूकन पाहे जल फल चहो दिस

नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम पियाए तुझे समाया, जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तिने वरताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया के सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन सबद बुझाया, श्लोक महला तीजा, इहो जल सब कै वरसवा, वरसे पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले, जो गुरमुख रहे समाए, नानक नगरी सुख होए, इना जनता का दुख जाए।

सब में एक वर्तदा। सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे दे मनहार। श्लोक महला तीजा, बाबी हाँ इहो जगत है, मत को परम पुलाए, इहो बाबी हाँ पशु है, इसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मनहार शीतल राग है, हर त्याय सांत होए।

सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया खाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असं

गणियार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जले हर मान का हब्बे मणि।

नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया कोई न सके जम काल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सगर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्षा दया कर गुड़ी छह बरलाए बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए महला तीजा चात्रिक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी एक वन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिणना में तन चार क्या कह रो वही सोहन खत्म द्वार जे सतगुरु से वही श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हो तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरो खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पग कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार

गुर कै सबद सलाहिए अंतर प्रेम प्यार बिन प्रीति पगत न हो बिन सतगुरु ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ढाडी करे पुकार जेहे दान संतोखिया।

इन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए।

जिसनो कृपा करे रजाय। श्लोक महला पहला। सरम करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडिया, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला।

रख कुत कुत हो चट जाओ जिथे जिया हो शीशार नक्की वड्डी लाए तबार पौड़ी आप उपाय मेदनी आपे कर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे।

सदा सुख होए महला पहला। अजर जरे तानो कुल बंद, पूजे प्राण होवे फिर कंद। कहां से आया कहां यो जान, जीवत मर्त रह परवान। हुक्मे बूझे तक पछाने, यो प्रसाद गुरु ते जाने। होंदा सरी अगनानक जान, ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी। पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या, बिन सके व्यापार जन्म बिरथिया। अंत न पारा।

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे परहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म।

काकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगिया।

नागर जना मेरी जात बिखिया चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग राव, सुरसरी सलल कृत बारुणी रे, संत जन तर्क नहीं पानंग, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी, मिलत न होए आनंग, तर तार अपवित्र तर मानिय रे, जैसे कागरा करत विचारंग, भगत भगौत लिखिए तिह ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार, मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता, नितै बनारसी आस पासा, अब बिक्र प्रधान तें करें।

स्तंभ के केद सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर करें डंडौत तिन कने रविदास दास।

रही हा पियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नवा चौक दे मह

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मेरा मन सात जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल सात जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम सात जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वत वत करिया, जो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुरु सतगुरु चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध।

मात पिता बंद पहर साख कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गड़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या परम परम।

जय राम रविया कट अंतर अस्थिर राम रविया रंग प्रीत हर के संत संत जननी के जिन मिलिया मन रंग रंगीत हर रंग लहे ना उतरे कबहू हर हर जाए मिले हर प्रीत हम बहु पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतित पुनीत कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ कुमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काड लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पाथ काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लो तरे संग साथ तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम टूट रहे पाई नहीं हाथ तू परे परे अपरम पर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सत्संगत मिल साधु पात हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपियो अकथ कथ कात हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे। गुरमत हो बल बले हो बल बले, जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी की चै लख बीस। जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस राव। हर कृपा कर स्वामी हम लाए, हर सेवा हर जप जपे, हर जप जपे जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको, हो कुमकुमे कुमकुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज रामो मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम। सत संगत मिल पज राम, बड हो भाग मथाम। रहाओ जित गृह मंदर, हर होत जास तित तर। आनंदो आनंद पज राम राम राम। राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा। सुख होत हर हरे हर हरे हरे, तज राम राम राम। सब शिष्ट तार हर तुम किर।

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर।

कटे काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाई है हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यों छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार आ

सुख पावे जप हर हर नाम निदान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जाको सतगुर अपना राखे सो जन हर रस रसना चाखे कहो नानक गुर कीनी माया हालत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पन्नवा आराधो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाव कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण नाबू जी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पे दयाल सहु नानक कौच।

अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बनया।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा।

साध सरन चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी देखी, सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नै तृप्तानो राज जो बन तन, बहुर बहुर फिर ताया, सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुन गाया। बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया, साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ। सगल आस होत पूरन।

सतगुरु प्रसाद। कथिए संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाइए मान।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए, सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए। कानड़ा महला पंजवा, पेख पेख बिगसाओ सा।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उधारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रम नास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेउ तेउ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे।

विखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

सरने आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पान।

अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु निवास।

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर्शेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तू

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनिक दास कीरत करें तुम्हारी सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन।

कनिक मंदर पात सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारों आप बिनस जाए।

मन मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई। कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मुक्त जुगत पुगत पूरन परमानंद परम निधान। तै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुरबान। कानड़ा मैला पंजवा करत करत चरच चरच चरचरी जोग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जपै तिवै

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विकदुत्तर करे ओ ना जावे गो। पौ बैराग पया है बोयत।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ

मिल सतगुरु नाम सियावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्त लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी लग

सब एक समाए समावे गो। एको रूप एको बहुरंगी सब एकत बचन चलावे गो। गुरुमुख एको एक पछाता गुरुमुख होए लखावे गो। गुरुमुख जाए मिले निज महली।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर।

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड नावे, दिख चार चार लिव लावे गो, स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख तर्म आन राखे। हर नगर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पा

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये, हर त्याये बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन कूर बांचे, हर दर सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाले, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी।

जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

सत्संगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गिया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोए हों मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभु पावे।

ज्ञान गुरुमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूरब लिखिया तिन मन वसियाए सतगुर के पाणे जो चले तिन दालद दुख

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहु विद पांक उपावने, सब तेरी जोत जोती विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख पुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कगी मार, जिन हर हर नाम न चेतियो, तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुफे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विचकल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन

ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावे तुझ सफल से गावे गुरमति हर निरंकारा सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा श्लोक महला चौथा हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अगाहा हर देव प्रभु मत उत्मा गुर सत गुर के पग पाहा सत संगत हर मेर प्रभ हम पापी संग तराहा जन नानक।

हर करो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यू का आल जंजाल। गुर तुठे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अकुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते जुगाद सते, परतक सते सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिस्त उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सुरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन नानक

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेश हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णीय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम से आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी जित हर सेवा।

मेरा हर प्रव सुगट सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विट्टो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी, श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले महला चौथा, गुरुमुख अंतर

सब जाए, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

वो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो हो, जिन जगत उपाए सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है, परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने। नानक सो प्रभ मैं मिले, हो जीवा सद सुने। पौड़ी। जगन्नाथ जगदीशर करते अपरम।

नहीं हर रोल, बड़ पागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायणो नारायणो जिस चूका जम चगड़ चबोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौदिया सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या सिर फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम तिखन, जेकर दूजा देख दे जन नानक कड दि।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राति। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग ससिया हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुड थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमख पछाने, ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

गुरमत मुरार हर मुकंदे जगदीशर चरण शरण जो आए तेजन पवनित पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर के।

अलम करंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर री जय रहाओ। आन जला स्यों काज न कछुए हर बूंद चाचिक पौधी जय। बिन मिलबे नाही संतोखा।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये, नानक तत् तत् सो मिलिए, हीरे हीर विदाई।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ताकी कहा करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ विष्ण महेश सिद्ध मुन इंदिरा कै दर शरण परो काहू पह राज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाये साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दी।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना सावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

ਗਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਉਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਲ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ ਔਰ ਨਾ ਉਪਮਾ।

हम निर्गुणी मनूर अति सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग ना की जाए, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन कौथम दीजे बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जोत

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

यो पीप पलास खाए ली जाए। सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए। निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित साखा हरी जड़ी जाए। परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास जगदी।

पसरे, सब चरण तले सिर दी जाए। नाम बिना नक ते नर देखो, तिन पस पस नाक वडी जाए। साकत नर अंकारी कही है, बिन नावे त्रिग जीवी जाए। जब लग सांस सांस मन अंतर, तत बेगल शरण परी जाए। नानक कृपा कृपा कर धारो, मैं साधु चरण पखी जाए। कल्याण महला चौथा, रामा मैं साधु चरण धुवी जाए। किल विख जैन होए खिन अंतर, मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ। मंगत जन दीन करे दर ठाडे, अत परसन को दान दी जय। त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए, मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय। काम क्रोध नगर में सबला, नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वो, गुरपुरा कार्ड कटी जाए।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस काढ़ कभी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर कवी जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लो चीज है। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जय। परम सुखे बहु उब सुख कही है, मिल साधु संग हरी जय। काते

जय। जेवड भाग होए अतनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय। सब माया मोह बिकुन जग तरिए सहजे हर रस पी जय। माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जय। अज्ञान अंधेर महा पंच बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय। नानक राम रम रम रम रम राम ते गत की जय। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय। छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला माए

समय पत कब होना होए। अवर सियाणत सगली पाज जय बक्से तै पूरा पाज रहाओ। नौ तेरा पान नौ दीवान नौ तेरा लश्कर नौ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाहा नाओ तेरा अमृत दिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए। नारी बेरी कर बरदेश मन किया खुशिया की चैवेश जा सदे ता फिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुर्ख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोए। यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करनहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर। दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित तन नाम न उपजे से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई रहाओ। अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा। जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतिया चंग्याईया देना पछो तावे। तुद सलान तिन तन पले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई

सुरख समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांका तहया दर परवान दिख अमृत दो समकर जान क्या कही है सर्वे रहा समाए जो किछ वर्त है।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कपनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टपद तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

और न करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते, इहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हौ तिस कै बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणिए कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

जागत करी कराहे मोर, अंतर वसे चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रंगन हारा, ऐनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल विगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदु से मन सामन मारी, गुरु प्रसाद प्रभु पाया। अति रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसम रसाए राते, रब रहया प्रभु सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

नानक विछड़ दुख पाए सब ज मिले से सूचा चारी साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराशत काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरुमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरुमुख आवे साध मना रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरुमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तन साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जा तो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आत पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया राग करवाती महलाती जा चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख विरला कोई बूझे सब दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पवित करो दिन राती इस युग का लोहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विट्टो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड़ अवर न दाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विच्चों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन

होई। गुर कै शब्द कमल प्रगासिया, सौम्य दुर्मत खोई। सब नामे एको सच वरते, विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ, अमृत तत्व खाने। हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने। सद बलिहारी गुर अतने विटो, जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग से आया। प्रभाती महला तीजा, आपे पांच बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया, कर कर वेखे करे कराए। सर्व जियानो रिजक दिया, कली काल में रवे आराम। कट कट पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा। गुप्ता नाम वरते विच कल जुग, कट कट हर पर पूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया, जो गुर शरणाई पग पया। इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे। सो तन तन हर जनवड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे। गुरते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे। कर आचार बहु संतोषं चे, जो किछ करे सो नरक परे। एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक स्ते उत्पत चले। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले। प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाए। पूरा पाग हो गए मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाओ। अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले। जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे फाचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एव आधार। आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा। सोई तगत सुगड़ सुजाना, नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा, विपास एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर भायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान। कित विद क्यों पाइए प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले। सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई। हम करें प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर जवाल। हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी, मुफाते माया जाल। खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, ऋण बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुद पाई, हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल।
दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक गावत सुनत बहु पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस टीक जिन हर हृदय नाम नौस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट गुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ धारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बचना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु गढ़पा सतगुरु बचन सुखाने हीर हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निम खफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती मैला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर धांबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोभ लुवाने उत कलत मोह लुभबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ सठ न जान
सुन मन गुरुमुखता में मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुरु सेव होए परम गते, हरख सोगते रह निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। प्रभाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस राया सोई जाने, तेक तेक मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुरपूरे की अकथ कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव। प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुख मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव। पाप पाप बिन से किन भीतर, तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी, अपने सतगुर के बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत न पाये, लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु ध्याय। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सगना से, सच नाम गुरदीनी रासे, प्रभ की दरगह शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे,

रह कलेस जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रभु गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए।

मन तन अंतर बसे गुरु चरना, निर्भय साद परे हर सरना, अनद सहज रस सुख घनेरे, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, गुरु पूरे अपनी कर राखे, हर नाम जपते किल विक्षव लाते, संत साजन सुख भय सुवेले, गुरु पूरे प्रभ स्यों ले मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहु नानक गुर पर्दा टाकिया, प्रभाती महला पंजवा, सतगुर पूरे नाम दिया, आनंद मंगल कल्याण सदा सुख, कार्य सगला रास्तिया रहा, चरण कमल गुर के मन बूते, दुख दर्द

गुरपुरा पाइये वडभागी, दर्शन को जाइये पुरबान रहाओ। किलगित में ते शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता से आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे, इहां उहां चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे परपूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भई आस, सर्व कल्याण सुख मन भूत।

कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप रहाओ। आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला कन्यावा चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर सर्व ऊपर तू ही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिगार दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन नानक पावे सुख अनेक।

उस जग में शब्द करने है सार, बिन शब्द है होर मोह गुबार, शब्दे नाम रखे उधार, शब्दे गत मत मोख द्वार, अवर नाही कर देखन हारो, साचा आप अनु

सुत कंचन सिंह हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए सम

तावत राखे ठाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए, जिस्म विनोद रहे परमादी,

नानक कहे महारसा किया परवा की महला पहला निवली करम पुलंगम पाथी रेचक पूरक कुंभ करे बिन सतगुर किछ सोजी नाही परमे पूला बूड मरे अंधा परया पर पर कोवे अंकर की मलक दे नाल है नाम बिना फोकट सब कर्मा जो बाजी गर परम पुले खट कर्म नाम निरंजन सोई तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ माया तंदा तावनी दुर्मत्कार विकार

याद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना

अंतर झूठा क्यों सुठ होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा।

समाय एक सिरकार से सतगुरु दिए मुक्त आना हर पद चीन पहे परदाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई नाम बिना गत किने न पाई प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श ले गुरु पूरे सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख विसरे पत पाई सूठी गुरमती चतुराई दिन सत बार ना लागे काई रहाओ मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई मन मुख ते अब पगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने इव मनु आखिन ऊब प्याली जब लग शब्द ना जाने ऊख प्यासा जग पया तिपत नहीं बिन सतगुर पाए सहज सहज मिले सुख पाये दरगे पैदा जाए दरगे दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझे पद निर्माणी जल तरंग अग्नि पवने फूल।

परख खजा में पाया जात वर्ण से सह अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में मैल चुकाया नानक तुम के चरण पखाले

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकनहार। सबल चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंग गवार। जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए। सात रते से उबरे दुखिए दूजे भाए। हर मंदर में नाम निदान है ना बूझे मुग्ध गवार।

मन मुख दर टोई नाल है, पाए दूजे कर्म कमाए, त्रिग खाना त्रिग पहनना, जिना दूजे पाए प्यार, दुष्टा के कीड़े दुष्टा राते, मर जमे हुए।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद से जुगता उर्ज

रहाओ। पाप करें पंचा के बसरे, तीर्थ नाय कहें सब उतरे। बहुत कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कालंक। कुगर बाद बजावे काला, अंतर कपट फिरे बेताला। वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया। कुंवर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया दे के नस्ता। देश छोड़ पर देशे धाया, पंच चंडाल ना ले ले आया। कान पर आए हिराए तू का, कर कर मांगे तृप्तावन से तू का। बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाये महा दुखियारी। बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी। अंते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता। बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते। मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौर न ठाई। जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला। कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया। जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए। रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलद सब काते। धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया। पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप।

ठाकुर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

केवल नाम जपो रे प्राणी, तभी ने चैतरना प्रभाती। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

हृद अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निष्बादं रहाओ। नित प्रति स्नान शरीरं,

तिलपू जस चक्र गणेशं निस्जागस पग परवेशं पगनाचस चित अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाथं जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

हाथ है। जय जावंती मैला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखे

बनता विनोद सुत कतंच भाप मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निर्तमोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बेह कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत बस्त्र।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे, नानक सर्व जी कृत पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं।

अवान्तरे महंत अदा सोयं तरंगं दुखंत जय चिंता जन्मं तमरणं अनित साधनं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडन ऋत बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समो अम

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते।

नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्गराजं नच दुर्लभं भोजनं विज्ञानं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे

आजा भोजंत कंद मूलं बसंते समीप के हरे तत्र गते संसारिनानक सोग हर्षं।

ਚਾਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ।

हर लब्दो मित्र सुमित्तो विदारण कदे न चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अपजसन मिटंत सतपुत्र सिमर तवर गए।

जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देव सरबे मूसन।

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता विनती बात। कबीर केसो केसो कू किए ना सोए सारे रात दिवस के।

एकेवत बिरला संत कबीर राम रतनो मुख पोतरी पारख आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल कबीर राम नाम जाने नहीं।

जीवन से पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक कड़ी आदि करी।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें साध तिरम के पाके से तू खेले काठी सरसों तेल कह ना फल पई ना तेल। तूंदत डोल है

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सह को माखी ओम राती वड्डियां कुकत उठन पास सिज तिना दा जीरिया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा।

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल। फरीदा इत सिराने पोए सवन कीड़ा लड़ो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टूटी नागर लाजे, जो सज्जन कोए

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आती है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर गह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह सों चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाज महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले केई पाये ने जिना प्यारे ने कंदी वहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वहन सिदाऊ गौ करे फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी जेड़ा कपर वात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े नो कप

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवे दिसे जो दरिया वैता अगे दोजक तपया सुनिए हूल पवे कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर दे वे

हलवसन रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला सज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सौ मिले से वेस करे ओ। महला तीजा काय पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जिना

ब्राह्मणे जिना विसारियों नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुहताज अल्ले से ती रतिया इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हन कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है परो साही लाल पचास, तेतन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कमल को अखर कमल गुण कमल को मणिया मंत, कमल को वे सोहा करी जित वस आवे संत। निहन को अखर खन गुण जो बामणिया मंत।

अनहोन दे आप बंदाए तो ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना जालाए सब नाम सच्चा तई याओ न कहे ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन मान।

पान नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर

अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उपत कर लो एक निमत तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मर कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर कुल ब्रह्म समसर एक दी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसयो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे सत निवास सच तथा वस करयो। सच सुन जो सन

पग माता बिचरत बिकले बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा ये मीठी जी माए हितानी बल बंट छप करत उपाया देखत सुनत प्रभ

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते धर्म अंधेर मोय कत भो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

ज्ञान के काट भरम भरे रे मनमूस बिला में गर्वत कर्तव कर्त महाम भुना संपत धौल धूल संग झूलत माया मग्न भरमत भुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुभना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना मृत मजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहालो मादारो देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहालो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन सिन सिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एहद करत औध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुच नेमा करम धर्म संजन सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पथ पंखी बिरख अस तावर बहुत जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मग्न चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

ग्रस्यो जम तो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर कृष्णा बिन सजाए हर।

गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान भरे गांग राज भगत प्रहलाद आत्म रस

गुण वर्ण चार फट दर्शन ब्रह्मादत स्मरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेबा रस आद अंत लेव लाज धुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान अंतर जाने कब कल सुजस

भगत दीन गुण रहे सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नाम।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो

सत संगत सहज सारे जागी ले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दिलियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध।

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागयो अलग पल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने दर्शन परसिए गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकलमल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

की जय को एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसार जिन भगत भा

तीरथ रव तिर कर संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

सत नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत दरिया सोई नाम अचल भगत भाव धारण अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व से दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुरु अमरदास तें पायो नाम धुयावे देव कैपीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरत सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु कुछ दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवे जिस पसाय

हृदय बसो अति हो सोए रस्य नहीं जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग राखो मस्तक निशान सचो करम पल जोड़ कर ध्यायो परसो गुर सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्य हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे

सरवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जितहिं बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुरु अमर निते तिन

सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सत्यते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर सन्न रे तई पढ़ो एक मन धर्यो एक कर।

छुपन एक पर तख एक सुमेनो तीस एक अर पंज सिदे तै तीस नीनो इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास।

गुर अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए पहुँ पाठ बिना से, गुर

आनूल है जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद

धर्म धन कर गयो भगत सीधे सर लड़यो भय निर्भर अटल मन सबक गुरु ने जाग लियो काम क्रोध लोभ मोह अपत

दई एक मन पुरख निरंजन ध्याओ गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ गुण गावत मन होए दिगासा सतगुर पूर जने की आशा सतगुर सेव परम पद पायो अदना से अवगत दयायो किस भेटे दारिद्र न चमते कल सहार तास गुण जमते जमपो गुण विमल सुजन जन तेरे अमर नाम जाको पुरिया इन सतगुर सेव सबल रस पाया नाम निरंजन उर धरया हर नाम रसक गोविंद।

छूटत प्रवाह में अमरा तत अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कर्ण कर्ण छकुन हरदास तने गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़।

रंजन घरेला। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेवे लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा कितला।

अबर भर उपायो अपार हृदय अंतर धारो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारो सदा चाहे हर भाय तीम रस आते जाने सतगुरु कहते।

अमे रस रसन प्रकाशय मिलत सांत उपजय दुर्ख दुरंतर नाशय सुख सागर।

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रस गुत्ते मत माता संतो

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृढ़ जन दुख पाप कौ कट होए जियो। तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृद बिचारे काम क्रोध खोए जियो। जीवन शब्द दाता अगम

गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सब सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारी निर्भव निरंकारी अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है भर्म।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे।

होती जो प्यास पियो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोर से बासन सुजो दंज सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो मन दास आस जगत गुरु की पारत भेत पर करो रामदास गुरु हर

प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों उनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर हृदय धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

का ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

सच जान मंत्र एह नित बातुर स्वयान लहे परम गत दियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो तार धो हमें का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा से दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तज निकार मन

सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनादर।

गुर समरथ गए किरिया धूप बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय साज तो और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गजा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर जग तेज तुम चाहे लोक प्रजा से देखत दर्स भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभते अलसमूजू कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारे ओ संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़े।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई, आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे, अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे, करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

प्रसाद सुदामा खूब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पासे। ताते गौहर ज्ञान प्रगट पुजियारो दुख दरिद्र अंधे।

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद क

गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बलभागी उन मानियो।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तो ए जस भगता कुल सौदी गुरु राम दास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैं मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो परस परस परस परस गुर

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जो मन वसाए कोए, गुर कृपा से मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

आए, बौरस साल ने सवार दी खटवस मीठे पाए। क्यों बाणी पदक सलाम दे हर नाम चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती भगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन पर गाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नाम

आनंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार, जमकाल नेड़ ना आवई आप बक्से करतार। नानक नाम रते से तनवंत हैन।

जिथे हाथ ना पाए मन मुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए सत्संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किथाऊ पाए बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नरक पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटुंब तरे परिवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोने सि सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसे जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदे पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ। से दाड़ियां सतियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दूर।

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाए गुरमुख ए मन रहसी है। जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे। जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया। गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रह आनंद नानक सह समाई है। सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है। जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया। जिनको प्रेम प्यार सो आप पहलाया कर्म कर, नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर। गुरमुख हसे गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे। गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार। जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार। तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे, जे आप बख्शे करतार। नानक गुरमुख मिले ना विछड़े, जे मेले सृजनहार। गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार। सतगुर की सेवा लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए। दरगह लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छड़ाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म आरादे हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए। नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लय मिलाए। मन मुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए। अंकरों कुसुध माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरुमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए। हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल। जिना एक मन एक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हौ मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए। गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए। मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग रह कूर करे आहार। दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म धर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए कुवार। सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए। रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए। सब किस किससे होया ज्यो तिसे धीर जाए, सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कह कहाए। गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए। हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सत

सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए सतसंगत सतगुरु सेवदे हर मेले गुरु मिलाए यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुर सिखा नु सावास है हर तुठा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्त करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिनस रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो। केहे वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

दुख सुख पाइए है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे पुजे ताहूं मैं कह ना कोई। गावे को तान

सुनिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागे सहज ध्यान नानक भगतां।

पछताई। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल

कोई जे को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाई मन्ने पथ स्यों प्रगट जाय मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होय जे को मन जाने।

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक।

सूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार।

दरियाओ। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवण

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरां सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा।

एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती।

जां करता सिर ठीक को साची, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण

आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिया लेखा हुए वनास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाए एती सुतना पाईया नदियां अतैवा पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरह अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं ऊंचे उपर ऊंचा नाऊं केवड ऊंचा होए कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वीच।

एके जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वपार मूल वपारिये।

आखह पड़ी करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वरे आखह सिद्ध, आखह केते कीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे, ता आख ना सकहें के ई के जेवड़ पा।

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पण रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूर।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिमें चिलावै जिव होवै फुर

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी।

पै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में कार्त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध

विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पवो खला अग्न तप ताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिये शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत।

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाल।

राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

मान सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन

सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जति सती नहीं पढ़िया।

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेस, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विसे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल, रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक, पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, किस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

आकर पहला मोती ता मंदर उसरह रतनी ता होहि जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरह तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ श्री राग महला पहला।

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहारै जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाउ नीर चंगियाईयां

सो क्यों मनहो विसारिय जाके जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह घस मस कर।

जित खादै तन पीड़ी मन मह चलह वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद सन।

तारी है, डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती चूर, जे लोड़ है वर कामणी, नह मिली है फिर कूर। ना बेड़ी ना फुलहड़ा,

रहाउ। प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम। गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास, श्री राग महला पहला आप ओ भैने गल मिले। अंक सहेलड़िया मिलकै करह कहानियां, समरत कंतकिया साचे साहिब सब गुण औगण सब असहा। करता सब को तेरे जोर एक शब्द बीचारिये, जां तू तां क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई मर

गुरमुख नाम सलाही है, हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली, हौ मैं रूग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा, गुरमुख कीमत सार। लख सियान पजे करी, लख सियो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया, बिन नावै दूख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है, गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पह वेचिया, मन दिया सिर नाल। त्रे भवन खोज टंडो लिया, गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मलाया,

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस स्यों नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अग्न मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न पाए।

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देख पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटे वणज वणजे मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यो दुख घनो नेतरोए खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यो ताल टुल जुम्मन हार रंग मान लै प्यारिया

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

को रह ना पर यह पाई सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजन हारू पांच वक्त निवाज गुजार है पढ़ है कतीब कुराना।

ओहे तू ओ नाका तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोल है तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पुछा।

आस सच संयम करनी सो करे, गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया, गत मुक्त करै मह पाए। हर का नाम त्याई है, सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करह, नव खंड राज कमाहे। बिन सत गुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे। हर हार कंठ जिन्नी पहरिया, गुर चरणी चित लाए। तिन्ना पिछै रिद्ध सिद्ध फिरै, ओना तिल ना तमाए। जो प्रभ भावै सो थीए, अवर ना करना जाए। जन

खाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार। लख चौरासी जिन सिरी, सब सह दे आधार। निरपहु सदा।

हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिन को लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगै ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

समाय तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जणेंदी माय हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाय जिन्नी गुरमुख नाम त्याया विचो हो आप गवाय ओए अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाय नानक आए से परवान है जिन गुरमती हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याई रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखिए जो हर राखे उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विचो मार तन गुरमुख सो

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाव रहाव मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाव बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काव गुरमती घट चानना

पाई लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाई बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसै जो तिस भावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मन मुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का शब्द

अंते हुए सखाई अपने मनचित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वत्सल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

गुरमुख बूझे कोई बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रवान भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है

कमाए जात सत संयम नाम है विण नाम है निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वरतदा।

लज्जा सहज सुपाई, गुर का शब्द अमृत है, जित पीते तिख जाई। इहो मन साचा सच रत्ता, सच्चे रहिया समाई। आखण वेखण बोलना शब्दे रहिया समाई, बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाई। हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाई, तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाई। नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय, पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटे जिसे आय। अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय, नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय। श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन, जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही। सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन, हर राखिया उर तार।

शब्द सवारण हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावै सब डुमणी दूजै पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवै जाय नदर करे।

नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावह साचे नाहि प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई हर सिउ रह समाए रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाए जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रा

पिर मुतिया, पिर मना पाया जाय। अज्ञान मती अंधेर है, बिन फिर देखे भुख ना जाय। आवहो मिलहो सहेली हो, मैं फिर देहो मलाय। पूरे भाग सत गुर मिले, फिर पाया सच समाय। से सहिया सुहागणी जिनको नदर करे, खसम पछाण है अपना। तन मन आगे दे, घर वर पाया अपना। हम मैं दूर करे, नानक सोभा वंतिया सुहागणी। अन दिन भगत करे, श्री राग महला तीजा। एक पिर रावह अपना।

सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होए श्री राग महला तीजा जग होमे मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल होमे धोती किवै न उतरै जे सो तीर्थ नहाए।

का निर्मल हुए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाओ, मन मैल है भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआए, गुर प्रसादी मन वसे, मल हउ मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मेले सो मिले, हम तिस बलिहार जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाउ, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाँव, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माहि समाव, श्री राग महला चौथा कर पहला।

तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाई मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई हम मूर्ख मुग्द शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हम गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरे हीर मिल भेदया रंग चलूले नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावे सो होए रहाओ मन रंग हो वड भागी हो गुर तुठा।

मलाए हो सतगुरु बिटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास हो गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थीए भागहीन बहर होए जो हर प्रभ भाणा सो थीआ तुर लिखिया ना मिटै कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल धुआ तिन पाए भाई रे मिल सज्जन हर गुणसार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार रहाओ गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आई सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वण तिन सबत है भागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए ओए सतगुर आगै ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार बहुत करह परमाईसी वरत है हुए अपार करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत जिसनो तू पतियां एंदा सो सन तुझै अनित अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत इन प्रभ आप पुलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हों मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रत्ता रंग हर, सब जग मह चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधातै, दुख सहसा मिट गया रहाव, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमियां, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग होए, वरतै अफरिया, सब को वसगत कर लयुन, बिन नावै खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिया, बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चित ना आयु, छूटैगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाह लैन, लगा कित कफकड़े, सब मुकदी चली रैन, रहाउ कुदम करे पस पंखी।

तां गुर का बचन कमाहे रहाउ हरि नाही नह डडोरी पक्की वडण हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जाहु आ हुकम किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे झाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाए कै इक आयास कमाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन

आवै एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ। गुरते महल प्राप्ति जिस लिखिया होवै मथ, मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक सबिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माय। रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन सीतल होए। जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे, सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई। जिस हर का नाम आधार, बाहां पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरिया पार। थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा, ढोई तिस ही नो मिलै, जिन पूरा गुरु लब्बा। नानक बद्दा घर तहां, जिथे मिर्त ना जन्म जरा। श्री राग महला पंजवा, सोई त्याई जीअड़े, सिर शाह पातशाह। तिस ही की कर आसमन, जिसका सब सविसाह, सब सियाणपा छड कै गुर की चरणी पाह। मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पैर प्रभ त्याए तू, गुण गोविंद नित गाओ। रहाओ तिसकी सरनी परमना, जिस जेवड़ अवर ना कोई, जिस सिमरत सुख होए घना, दुख दर्द ना मूले होए। सदा सदा कर चाकरी, प्रभ साहिब सच्चा सोए। साध संगत होए निर्मला, टटिए जम की फास, सुख दाता पै भंजनो, तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरवान, ता कारज आवै रास। बहुतो बहुत वखाणिए ऊचो ऊचा थाउ, वरना चिहना बाहरा, कीमत कह ना सकाउ। नानक को प्रभ मया कर, सच देव हो अपना नाउ। श्री राग महला पंजवा, नाम त्याए सो सुखी, किस मुख उजल होए। पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए, साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम त्याए, नाम सहाई सदा संग।

ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार एक सका मन आसरा इको प्राण आधार।

मात पिता इकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान तनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई, किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए, जिन मन वसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान, जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसया मन आई, अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाई, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय, मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ, मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान, पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जे मिले पाईए शब्द निदान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाओ, कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है।

चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाऊं। मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाऊं। नी माणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाऊं। हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे ना आवे जाय। ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहे समाय। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाय। अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय। भाई रे मीत करहो प्रभ सोय। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय। रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार। जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत। गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात। सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात। जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद। किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार। सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उर धार। मेरे मन हर बिन अवर ना कोय। प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय। रहाव रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक। मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक। गिन कीता तिसह ना जानी मन मुख पास न पाक। अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर। तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर। राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस। सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख। मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए। रहाव नाम निधान त्याई है मस्तक होए भाग। कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग। कर संगत तू साध की अठ सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआउ। एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाऊ। करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागती सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ अपने गुरु हुआ कृपाल। सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जन।

लाभे आपनी एक निमख ना मनो वसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाई साधु।

पास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाव। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अत अगली कोई आण मलावे माय। चारी कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर।

एक सदा सदा आराधी है एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा कर दूजा गोयल आया गोयली क्या तिस डंप पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार क्या थोड़ी बात गमान रहाओ जैसे रैन परौनी उठ चल सह प्रभात क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों

चलना, छड जासी लख करोड़, लख चौरासी भ्रमतियां, दलब जन्म पायो ए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए। श्री राग महला पंजवा, पिचर वसह सहिलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया ता

धारै पाप सगली जाहि हौ तिनकै बलिहारनै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया सगल।

मान अपमान मंदी सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गाते अवगत।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार, गुर

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जां धन कंत ना राविया तां बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीत गुर कै शब्द सलाहन।

शब्द पछाणिए साच रत्ते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरे दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावे अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई सत।

मैं गुण नाही कोई हर वर नार सुहावनी मैं पावै प्रभ सोई नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होई श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी है तीरथ कीचै वास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास।

रहाउ गिन राशी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार गिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चलै कार्य सार बन जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

सोह प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

ये फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं, नाम पूली जे फिरा फिर आऊं जाऊं, पुछ हो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई, राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई, नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई, श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए, निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै, सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर, पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए, रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार, राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार, हाट पटन गढ़।

तगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंधे साधु।

सुख दुख सम कर जानिए है, शब्द भेद सुख होए, वेद पकारे वाचिए, वाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए, हौ सद बलिहारे जास, चहो जुग मैले मल भरे, जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूणिया, मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया, अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए, आप पछाण घर वसै, हमें तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले, जो राते

हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दुहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊ रहाउ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ तिस बिन घड़ी ना जीव।

शब्द रत्ते से निर्मली तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछ

अतुल ना तुलिय कथन ना पाया जाय व्यापारी बन जा रहा आए वजून खाए कार कमाव है सच की लाहा मिलर जाय पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाई गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन बीचार मन दी जय गुर अपने पाईए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगण मेटन हार पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संची है पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावण ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवान्य मलार सतगुर पै का बोहिथा नदरी पार उतार एक तिन प्यारा विसर दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिरसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावै धन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथ उकाथ आवै जाहे पवाई है पय किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मे

कै बिन जल मरनतने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

खवे दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर।

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरै,

माया परम पलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर अस नाम प्यार साच सहज सोभा घणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सच्चो पल्ले पाए पुल्लने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो

रह ज्यों पावे तिवें रजाई। श्री राग महला पहला राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार। ज्यों पावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए जिन तन मन साज सिंगारिया इस सेती लिवलाए रहाओ तन बै संतर होमी है एक रत्ती तोल कटाए तन मन समधा जे करी अन दिन अग्न जलाए हर नामे तुल ना पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत तराए तन है मन चल गालिए ती मन ते रोग ना जाए हर नामे तुल ना पुजई सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत करी बहु है वर गैवर दान पूम दान गौं कणी पी।

साजी है एक चानन तेहो लोए कर्म मिले सच पाई है तुर बख्शना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाई अकथ कथा विचारी है जे सतगुर माहि समाई पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाय कट कट वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुपाई बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाई नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसह धौल हार बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हित प्यार अंदर खाली प्रेम बिन तह ढेरी तन शार पाई रे तन तन साथ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जाने अपने तिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चल वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मन मुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है ज्यो बारक दूध माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाम रहाउ चला चला जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुर को मग ना जाने, अंधे ठौर ना काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई, पे अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करह दिन राती, हम मैं मोच काया, जिस स्यो राता तैसो हुए, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाहु लाई, गुर शब्दी बीचार, सतगुर सेवे सहज उपजे, हम मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उरतार, प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाई, नाम निदान हर मन वसे, हम मैं दुख सब जाई, सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कह कहाई, बिन गुरे आप ना जाई, हर जियो भगत वशल सुख दाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सुख

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवी, नाम न लागु पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र सुध हो जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

गुर कै पाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चहो दिस जाहे, जेता उड़ह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाम, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राम। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाम, हुक्मे कर्म कमावणे पै किरत फराम। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमा।

कह पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुरु भेटिया निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको नाउ बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाई,

पंडित पड़ वाद बखान है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय। पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय। गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे। हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे। बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे। सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए। बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा। सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है,

सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच स्यों।

दुबला नांग भूख की पीर दमड़ा पल है ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहो ना को करे ना किश होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चौह कुंट का घड़ी न बैसन सोए जित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार।

सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो परगट पहार है जापदा सब नावैनो परतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतिया फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगता हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखानिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटोह कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियों, लगे ना तत्ती वाउ जियो, मैं मन तन प्रभु त्याया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, पैण भाई सब सजना, तुद जेहा नाही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुइया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कार लायोन, ज्यो भावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेंडिया, कान कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराओ जियो, हों वारी कुमा जामदा, एक साहा तुद ते आए दा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित ते आए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

बन जा रहा मित्रा हर पाया उधर मंजार हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधी विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवे धन संचवे बन जा रिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभाले जे होवे अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेव हो पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सीती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहन भगतां दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा धर पाए ता उदरे माहे दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म सकर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा मन मत्ता अहमेव बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबहू ना सेवया सिर ठाडी जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा एक संचय अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चित न आवे साध संगत स्यो संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजनहार वसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिक संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा दिन नेड़े आया सोई गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते हुए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानन होए
कहो नानक प्राणी चौथे पहरै दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का बनजारिया मित्रा उठ चले कमाणा साथ। एक रत्ती बिनवना देवनी बनजारिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेवया से दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो गो ऐसो खात। कहो नानक भगत सोह दरबारी मनमुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए। सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे। मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा। अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी। एव कड़े हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सुहंदी। सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़े नाम संभालिया। सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया। हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी। हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो। हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवरै मेरा काजो। हर हर भगती काज सुहेला गुर सतगुर दान दवाया। खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया। होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी। हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया। नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर लिबह तेरे नाले। संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई ना जाए। मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए। जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी ओ मित्रा दिख सागर संसारी। चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे। आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी।
नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने।

हरि मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम।

निदमानिया सर्ब सो सुख आनंद कन प्यारी हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाद कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया।

नहि मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईआ, हर किने न पाया नाउ। विच हऊं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एनस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रिय।

तब आपे तुदे उपाय कै आप कारे लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई हर तुदहों बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्याव संत जन हो जो लय छुड़ाई। सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इकाशाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिख पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्योने हो किसे आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार ता कह पाछे जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कही ना जाए। सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा तेह तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराद दे तिन्हों कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कह रंग रह कबहू ना टूट सने हो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चे पाए। महला तीजा नदरी आम दा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है कर्मी पल्ले पाए। पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो की

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमै चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजै लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सुपाए भगती रंग न उतर सहजे रह सुमाए पौड़ी सृष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ढाया तुद आपे पावे सू कर है तुद ओतै कम ओए लाया इक ना सच बुझायो न तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटिए फिर आवै जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधोले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाए नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माही बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाव पाईऐ मनमुख मोहि विनास ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराव हसै ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चौ मरना रमैया जपोह प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै ता लागै भाव परम भलावा विचों जाय उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत

प्राणी जरा मरण भौ विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेश संग, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसार, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली,

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव है गा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया पुछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तहा तुम जो नायक आचो अंतर जामी प्रभते जन जानी जय जानते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहु रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया हों रह

से मेरी माई। हर जियो कृपा करहो गुर मेलहो, जन नानक हर तन पल्लै जियो। माज महला चौथा, मध सूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहो गुर मेलहो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

कीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे पूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वडदाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिन सरहण जियो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किस दिया पलिया जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किस लैना। शक्ति ही अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दी जय जित विसरह नाही। सा मत दी जय जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो। माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै। भाणे पूर ज्ञाना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै। जो साहिब तेरे मन पावै।

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निर्तन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निध सिद रिध हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावै। जो गुर लागा पाई जीओ। दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारे पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जीओ। जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जीओ। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जीओ। माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जीओ। नाम औखद मोको साधु दिया किलबिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे डरदा जीओ। जिसका अंग करे मेरा प्यारा।

सो परम फलाही। गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहे लाजियो। चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा। आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आराधे जीओ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीओ से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी सरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीओ माज महला पंजवां तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिय जीओ तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नदर निहालिए दियो। माज महला।

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल

सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर बिरता कोई ना जाए जियो दया धारी तिन सिरजनहारी जी जंत सगले प्रतपारी मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वन त्रिण त्रि पवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा पता।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुए, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ, आनंद मंगल कल्याण।

राम ठाकुर अत पारी तुमरे कर्तव तुम ही जानहु तुमरी ओट गोपाला जीयो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे।

गुर प्रसाद मन तारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सोई।

नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भौ बिन सह हर हर त्याई है, जिन सेवे आसो पार ग्रामी, कार्य सगले थिए जियो, आए पया तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों लह मलाई, कर कृपा प्रभ भगति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रतपारी, ज्यों बारक माता सम्हारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्याई, जे तिन मह सगल उदारी जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारी, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब देखोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साह तिस ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसम कह पाणे जीओ हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारी नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणी जीओ माज महला पंजवा हीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा टाहया जीओ मन पन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान ना दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहया जीओ जो किछ करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपनिया संतां नु आप सहाई प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ चरण कमल जन का आधारू आठ पहर राम नाम वापारू सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वस है हर जन

भरम खोया गुरपूर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निद नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवां ऐथै तू है आगै आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं

सुख पाया सो जन्म न जूए हारी जीओ नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गाव हो दिन राती सफल एहा है कारी जीओ दृष्ट तार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेण होर दूजा नाही बाबा नानक एह मत सारी जीओ माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारी सरबस दीजै अपना वारी आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

निर्मल, जिन देखे सब उतरह कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवे, बिनसिया भ्रम पहु तीठा जीओ, माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगे।

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निह चल पाइए नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

मैं बाहर गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावी सच सिंगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाई जिसनो नदर करे तिस गुरु मलाई किल बिख काट सदा जन निर्मल दर सच्चै नाम सुहावणिया लेखा मांगै तां किन दीऐ सुख नाही फुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लै प्रभ साचा आपे बख्श मलावणिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर कह शब्द मलाई नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मलावणिया माज महला तीजा इको आप।

तह नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम त्यावनिया, अण दिन राते जो हर पाई, मेरे प्रभ मेले मेल मलाई, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझावनिया, जिन सच जाता से सच समाणी, हर गुण गावे सच बखाणी, नानक नाम रते बैरागी,

तै सदा नाली गुरपद साधी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर किरपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपी बख्श मलावणिया, मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया, वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ा बणिया, तेरी भगत सच्ची जे

कह आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेव है सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवे सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरण तमा।

सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद बखाणे, परमे भूला।

अंदर पीजे, बैस सुथान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनो नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाई, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सो बा पावणिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवै वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जीओ सफलो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सच संगत मेल मनावणिया, हर सत संगत आपे मेलै, गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गुआई, दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलानी।

रे विद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओ पत होए। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपुरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईऐ नाही, शब्द मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

पावणिया। किस बाजू हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी, अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया, अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर परसा।

अमृत पीवै जिसनो आप पी आए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई, जिन सिर जीतने आपे गोई, नानक नाम संभाल सदा तू, सहजे सच समावणिया, माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाई।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे तां त्रे पवन सूझै।

मैला खाई फिर मैल वधाई मनमुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सबाई सी निर्मल जो हर साची पाई नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सोह हत उजल नाम त्यावणिया हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावणिया रहाउ गोविंद गावह सहज सुपहाई गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई सदा आनंद रह भगत करह दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी वज्जै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचै दूजे पाए दुख पावनिया जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरनी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाही दुख कब ही नाही सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जीओ वारी सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेवह से सदा सोह सुबा सुरत सुहावणिया रहाउ सब को तेरा भगत कहाई से भगत तेरे मन पहाई सच बाणी तुदै सालाहन रंग राते भगत करावणिया सब को सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा जा तुद भावै ता नाही रचावै तू आपे नाउ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरक सोग सब मोह गवाया इक सस्यों लिव लागी सदही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरै चाई नौ निध नाम वसया मन आई पूरे भाग सतगुर पाया।

दुखे दुख विहामणिया लिखदियां लिखदियां कागद मस खोई दूजे पाए सुख पाए ना कोई कूड़ लिख है तै कूड़ कमाव है जल जावे है कूड़ चित लावणिया गुरमुख सचो सच लिख है विचार।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अनदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाए देस अंतर भवै दूजै पाए खुआए बिरथा जन्म गवाया कपती बिन शब्दै दुख पावणिया धावत राखै ठाक रहाए गुर प्रसादी परम पद पाए सतगुर आपे मेल मलाए मिल प्रीतम सुख पावणिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजै पाए बिरथा जन्म गवाए आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावणिया इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हूं मैं सुखै सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाए तिन पी तन मह मन ना दिखावणिया आप कराए करता सोई होर के करे कीतै क्या होई नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मियावणिया हौं वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पी आवणिया रहाओ हौं मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्दै नाम ना पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मन।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

कर आए, गुरमुख हृदय उठाए आप आई, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुर ते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तुन घट अंतर, आपे बणत बनावणिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज ना

की। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए। गुर कै शब्द

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे भाई कर लाई नाम भूले दे सजाई तड़ी मोहत का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढावनिया पे यड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खरी कवाले उकरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे यड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सोबा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे हैं गुर शब्दी मुक्त करावणिया इहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख महराता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द स्वामणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंदे ऐसे कर्म।

सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आवणिया रहाउ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणे मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिय शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इहो मन सच रंगावणिया जो सच रत्ते तिन सचो पावे आपे दे ना पछो तावे गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया कूड़ कसत तिन्ना मैल ना लागे गुर प्रसादी अन दिन जागे निर्मल नाम वसै कट पीतर ज्योति ज्योत मलावणिया त्रै गुण पढ़े हर तत् ना जाने है मूलों भुले गुर शब्द ना पछाण है मोह व्यापे किस सूजै नाही गुर शब्दी हर पावणिया वेद पकारै त्रिविध माया

प्रीतम मेरे तुद बिन अवरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करह तू नह मलाई पूरे गुर कै शब्द त्याई शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंते गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर फिर आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माज महल।

सर्व निवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै शब्द संजापे जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड साहा।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जीओ किन बिद बाधा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जीओ कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै एह बिद कौन प्रगताए जीओ कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जीओ गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जीओ हउमै बाधा गुरमुख छूटा गुरमुख आवण जावण टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जीओ गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै गुरमुख बिद प्रगटाए जीओ गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जीओ सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जीओ माज महला पंजवा प्रभ अवनासी ता क्या काढ़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखा।

गुरमुख मन तन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया रहाव। तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा, थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया, सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुध से पूरे कर्म समावणिया, अंधकूप ते कंडे चाड़े कर किरपा दास नदर निहाले, गुण गावे है पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया, एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला, माया अग्न ना पोहै तिनको, रंग रते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जाननिया, जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगै काई, तू साहेब सरन सुखदाता, सत संगत जप प्रगटावणिया, तू ऊच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवां कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है रहाव, संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लगई जिन मन बुठा आए जियो, से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे,

सब सवार लह नित पूजो हो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना किनह गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिस द भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगन पात शाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया जन्म का फल पाया मन पावन दा कंत हर तेरा तिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादी है होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा।

ज्ञान पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से कही है धन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाई बगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मत्ते जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटी है सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही चेत जित दिन देहे बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावै माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाई आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए प्रभु।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछ धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर है।

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर फिर बिन चैन ना पाईए खोज दिते सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

नंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भावसी संतां की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं समार।

जिन रच रचिया तिसह न जाने, अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीक कर होवे, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा, मनमुख

जानिए। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। तू आपे खेल करहे सब करती, क्या दूजा आख वखाणीए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणीए। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजाणीए। पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक, तुदे आपे तंद लाया। मोह ठगौली पाए कह, तुदे आप हो जगत खोआया। जिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया। सहसा एहो संसार है, मर जमै आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जां तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना। पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना। जीबै बाजो बोलना, इउं जीवत मरना। नान

ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लै, गुरमती तुझे लाया। एक खड़े कर

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिए गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सोम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखिय है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखिय है।

पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलहा बुरी संसार वादे खपी है बिन नावे वेकार परमे पची है राह दोवे एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

हुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चल।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवै दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावै ता वावह गावह तुद भावै जल नावह जां तुद भावै

कहावै जां तुद भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जां तुद भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जां तुद भावै जाहे दसंतर सुन गल्लां घर आवै जां तुद भावै नाहिर चावै तुद पाणी तू भावै नानक एक कहै बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जां तू वड्डा सब वड्याईया चंगा चंगा होई जां तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चुवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है सलोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिद गत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अभुल है ना भुलै किसै दा भुलाया।

काम क्रोध विष वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया, दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया। सलोक महला पहला, सबाही सालाह, जिन्नी त्याया इक मन, से पूरे साह, वक्त है उपर लड़ मोए, दूजे बहुते राह, मन किया मती खिंदिया, बहुत पए असगाह, गोते खाए ना निकलह, तीजे मुही ग्राह, भुख तिखा दोए पौंकियां, खादा हुए स्वाह, पी खाने स्यों दोस्ती, चौथे आई ऊंग, अखी मीट पवार गया, पी उठ रच्यो नवाद, सह भरिया की पिड़ बद्दी, सबे वेला वक्त सब, जे अठी पौ होए, नानक साहिब मन बसै, सच्चा नावन होए।

अजे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इन चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लईन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सा लाया ना

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है बिन सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग महल खवाई है सब जग ठगियो ठग आई है जाई है तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई है सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नहातै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ हो।

रह सुआया। नानक मंगे दान जो तुद पाया, सलोक महला दूजा, दीख्या आंख बुझाया, सिफती सच समेओ, तिनको क्या उपदेसी है, जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे, कह कह कतना

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम पूजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दुपदे

बिन काढ़त काच न काच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाऊ सहस सियाणप पवै ना ताऊ नानक मन मुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दुआऊ गौड़ी महला पहला डर कर कर डर डर डर जाई सो डर केहा जित डर डर पाई।

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सब को तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किछ कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ। ताँ कै सद बलिहारे जाऊं आ।

ज्यों अबनासी सहज समावे। नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर निकाम। रहाउ सहजी आवे सहजी जाई, मन ते उपजै मन माही समाई। गुरमुख मुख तो बंद ना पाई, शब्द विचार छुटै हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनास। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटै बिखमाट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिलै पूरब संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग। मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध

मानिए अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज समाऊं, गौड़ी महला पहला। सतगुर मिलै सो मरण दिखाई, मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई, मरन लखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ, सतगुर मिलै तद दुबदा भागै। कमल बगास मन हर प्रभ लागै, जीवत मरै महारस आगै। सतगुर मिलै सच संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिलै जम का भौ मूचा, गुर मिलै मिल अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हो मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिय डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी ऊपर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी रहाऊ।

ईसा तना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

लब लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाव, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एक है, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख ना लखना जाई रे रहाओ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख कर है तेता दुख लागे, गुरमुख मिले वडाई रे, जो तिन किया सोई होआ,

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देख पिछों देख, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह बन जारा, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किश मेहर उपावहु, डुबदे पत्थर तारी।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाऊ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की तेरा

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

का अलाय बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावै दुखिया चलिया रोए रसना हर रस चाखिया सहज सुपाई।

शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावै मन तन राता नाम सुहावै रहाउ। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावै बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करहै मूर्ख आप जनावह नच नच टपह बहुत दुख पावह नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजै पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदै राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ। गुरमुख हिरदै जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए।

पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसरहे तब ही मर जाऊं रहाउ तिन तू विसरहे जे तुदे आप पुलाई तिन तू विसरहे जे दूजे पाई मनमुख अज्ञानी जोनी पाई जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाई जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाई।

तै पुन तिन हउ मैं मारी, नानक जो नाम रतिए तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाए, गुर शब्द मारन मन माहे समाहे, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाए।

साई गुरमुख भगत हर नाम समाई आपे दात करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिन कहो जयकार गौड़ी गवारी महला तीजा एक सते सब रूप है रंगा पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा पिन पिन वेखे हर प्रभ रंगा एक अचरज एको है सोई गुरमुख विचारे बिरला कोई रहाउ सहज पवै प्रभ सब नी थाई कहां गुप्त प्रगट।

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस काल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुवारेरी। सच्चा अमर सच्चा पातशाह।

राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

गुरमत विरला बूझै कोई, नानक नाम समावै सोई। गौड़ी गवार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई। पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई। ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे। आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे। नाम रखते पहुजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा। हम मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजै निज करवासा। नाम रखते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी। जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी। नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी। गौड़ी गुआर री महला तीजा, सतगुर मिले वड भाग संयोग। हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए, रहाओ ज्ञान ध्यान।

बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटै गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत तत स्यों मिलिया, हुनरप जन्म नायाही। गौरी बैरागण महला तीजा, सब जग काल बस है। वांदा दूजै पाई, हम मैं कर्म कमावंदी। मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए। गुरमुख नाम निदान लै, दरगाह लै छडाए। रहाओ लख चौरासी भरम दे, मन हठिया वै जाए। गुर का शब्द ना चीन्यो, फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आए। अन दिन भगती रत्या, हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हम मैं तजे विकार। जन नानक करमी पाईन, हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पे अड़ै दिन चार है। हर हर लिख पाया, शोभा वंती नार है। गुरमुख गुण गाया, पेव कड़ै गुण संभलै। सोहरै वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया। हर हर मन पाया, ससुरै पेयै पिर वसै। कहो कित बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है। आपे मेलाइयै रहाउ, आपे ही प्रभ देह मत। हर नाम ते आईऐ, वड भागी सतगुर मिलै। मुख अमृत पाईऐ, हम मैं दुबदा बिर सजाए। सहजे सुख समाईऐ, सब आपे आप वरतदा। आपे नाए लाईऐ, मन मुख गर्ब ना पायो। अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह, फिर पछताणी। गर्भ जूनी वास पाए दे, गर्भे गल जानी। मेरे करते एवं भावदा, मन मुख परमाणी। मेरा हर प्रभ लेख लखाया, तुर मस्तक पूरा। हर हर नाम ते आया, भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंद पबीरा। हर हर बख्श मलाए प्रभु, जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया। हर तत बीचारा, मत मलीन प्रगट पई। जप नाम मरारा, शिव सकत मटाईया। चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन को लिखिया। तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाईऐ संत जन। जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जीवती। गुर मेले हो हर रस पीवा। रहाओ हों हर गुण गावा, नित हर सुनी। हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया। मेरा मन तन लीनी, तन तन गुर सत पुरख है। जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया। सो गुर हम कीनी, गुणदाता हर राय है। हम अवगण यारे, पापी पाथर डूब दे। गुरमत हर तारी, तू गुणदाता निर्मला। हम अवगण यारी, हर शरणागत राख लेहो। मूड मुग्ध निस्तारी, सहज आनंद सदा गुरमति। हर हर मन त्याया, सज्जन हर प्रभ पाया। कर सोहिला गाया, हर दया तार प्रभ बेनती। हर हर चेताया, जन नानक मंगै धूड़ तिन। जिन सतगुर पाया, गौड़ी गुआरी महला चौथा। चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया। मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी। हर भज मन मेरे, तर भौजल तू तारी। रहाओ
सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी, पारत्रय त्याग करी ब्रह्मचारी, मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन बड़ भागी पावे संत जना सिउ प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गवार री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै बिगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जां हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआरवी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छडाए।

दागरी सौ दागर धावे धन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौं कुर्बानी गुरे अपने जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

कृपा तार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागु जन नानक जो अंति अवसर लय छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है मेरा

अन दिन अन दया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़े हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया हर गुर शब्दी चख दीठा राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाउ हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुर लाग बसीठा जिन गुर बचन सुखा ने ही अरे तिन आगह आन परीठा मन मुख हियरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीठा बिसियर कौ बहु दूध पी आई है बिक निक सह फोल फलीठा हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु कस गरुड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियारै दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरै प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन।

अब नानक सरलागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा

गुण कामण करी हा जीओ, मिल संत जना रंग मान रलिया जीओ, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जीओ, हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पाए अड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाए हर आपे वेख हर आपे कार लाया जीव एक खाव है बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकण्यो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेरे।

हर कथा मंग है हर चंगी दियो हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया भरपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामै हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिलै सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ ना

मन लगा भाव जियो गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माध महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो। हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसहु संतो जी हर खो।

सुपने पेखारी, एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया, इन बिद कुशल होत मेरे भाई, इउं पाई है।

कौड़ी ग्वारी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाउ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म परापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लेहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी ग्वार री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कटी जम पासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाई गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नाया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वार री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्यावो रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग।

हर कीर्तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पय दयाल पूर्ण होए सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुर पूरै सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईऐ, कहो नानक वड भागी पाईऐ। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसाह, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

तुम बसना, निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा। व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार। पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हौ फासा। व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, विचार व्यवहार व्यापत एह जात। सब किस व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माय। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताकै निकट न आवै माई। गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, हुन तेरा कै बाप ना माई, हुन तेरा कै मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना होए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

नाम। पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत, निर्मल करनी साची रीत। गुरपुर मेटिया अंधियारा, नानक का प्रभ अपर अपारा। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, जिस मन वसै तरै जन सोए। जाके कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछ पौ न व्यापै। अमृत नाम हृदय हर जापै। पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक हो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

ना मोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट ना आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाई, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुर अपने कहो बलिहार, छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मान हर चरण गही जय, कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवा, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाव, जां कहो रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जां

दुख सुख सम कर जापै ताको काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाऊ जाके अचिंत वसै।

सेव आद पुरख अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरा मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

रहाउ। खात पीत खेलत हस्त बिस्तार, कवन अर्थ मृतक शिंगार। जो ना सुनह जस परमानंदा, पास पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम प्रिद माहि सुमाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप। नाम तरीक झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया। मिल संजोग।

सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर मित लुजै छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश।

पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक कर्णहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत के संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग

मुखार हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

साध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरण आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै रहा।

टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई, गुर पूरा पीतिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण।

जात पूरै गुड़ काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मनह सुमाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवा, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आथाम सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी मोहल्ला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

तुमरी कृपा ते दरगाह धाम। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुरु पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, तन बिना जैसे थोथर तुखा। नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी। नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग। परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जने ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रवतारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाऊं, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाव, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेट।

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से ही जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किछ करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहो सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिघन।

चित्त सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमो

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वडभागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोई, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। भ्रम बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाती मन तन शीतल चरण हर राती पै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत।

जन्म जरा मृत जिसवास, सो सुसमरथ सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय संभाल, घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग रहाउ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन इहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे, सोवड भागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिन नाम झूठा धन माल रहाउ। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग मह आया सो परवान, घट घट अपना।

कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरन ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी मेल लए पूर्ण वड भागी रहाउ परता पेख बिगसै ज्यो नारी त्यों हर जन जीवै नाम चतारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर सिउ राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल सिउ लागू मना।

किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रविया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवा, जीवत छार जाहे देवानी, मोया उनके को वरसानी, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया, काहू काज न आवत बिखिया, रहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई, दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार, साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराध, गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार, अपने दास को राखन हार, रहाव आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वद ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई, आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए, गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप, पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा, तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाओ साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी, रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही, सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल, मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ, गौड़ी महला पंजवा।

प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहों मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगोरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कमल विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागन रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाउ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड भागी हर संत मलाही।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योती जोत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नारी।

आज्ञा है बसन सुहेला। यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सुई विहाजो हो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास इही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला।

कृपा राखु राखनहारी। खेद कर है और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी। कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया। निरपो संग तुम्हारे बसते,

नाग सदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जाग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुखदाते अगम्य गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेह प्रसाद एहु पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व सुमानो एक ओही सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वडियाई।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवां हौ तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग हुन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवद जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए इकतरा एक सकै वस किए दस बैरागने आग्या कारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंत एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटै।

मन की आसा गुर भेटियो हर रंगा नामक जाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय है प्रगट प्रभ होआ अनदिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति उच्चे सुखदाते प्रभ प्राण अधूरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन कहो करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोह कहो हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे कहो गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोह कहो सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोह को अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवां पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याय रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस पावे तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरु बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है बड़े भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याय रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापीऐ, सो जन दुख ना व्यापीऐ, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्न ते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का पहो गया, गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसरे राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जा को गुरमुख हृदय बुध, ता कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी, करने हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर धन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाव, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, कृपा निध मैं जितनो, गौड़ी महला पंजवा, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज स्वार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते इहो मन हो रह रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निध मोरे, गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख पय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खय, कृपा निध प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त पया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइय, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइय, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटह,
सर्व सुखा सुख पाई, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आई, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चल, कर सेवा सतगुर अपने की, गुरते पाई है पाल, गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी, बिनसे सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवां।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाऊ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।